तबसरा और करंसी रेट्स। पल पल की खबर हर पल। आपकी पहचान आपकी जबान आपकी आवाज वॉइस ऑफ नॉर्वे।

0: तो आइए प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं।
1: ये तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई।